0: बुद्धिस भजन चरण सरसांगी।
1: ब्यूटिफुल। ऑफ कोर्स गिरिधर गोविंद गोपाल इज द पॉपुलर वन।
0: या
1: द अदर वन इज नॉट सो ऑफन संग।
0: करेक्ट, बट स्टिल वी सिंग इन द मंदिर, मे बी इन द मॉर्निंग्स वी सिंग।
1: सो लेट्स मूव ऑन टू आवर भजन। Daya Maya Shri Rama Hare. Shall we do the swaras of this bhajan?
0: Yeah, let's do the swaras. Let's take the first line.

0: तैयार होते हैं। एक सिनेमा को जाना है तो जेब में 5 रुपए डालकर और चप्पल पहनकर तैयार होते हैं। यदि वॉकिंग के लिए जाना है तो एक वॉकिंग स्टिक लेकर और चप्पल पहनकर तैयार होते हैं। यदि हम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वरना कैंसिल भी कर सकते हैं। आज सिनेमा को नहीं जा सकते हैं तो कल के लिए टाल सकते हैं।
1: अंत्य प्रयाणमु कैंसिल చేసుకోవడం గాని పోస్ట్‌పోన్ చేసుకోవడం గాని సాధ్యం కాదు। కనుక మన జీవితం అనేటువంటిది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఏ రీతిగా మనం చెప్పగలం? ఎవరైనా అప్పుడు తీవ్ర వైరాగ్యంతో సంసిద్ధులమై ఉండాలి। కాలం ఎవరి కోసమూ ఆగదు। కాలాన్ని మానవులు అనుసరించవలసిందే కానీ కాలం మానవుల్ని అనుసరించదు। కాలం ప్రవాహికమైనటువంటిది। కనుక నీవు తీవ్రమైనటువంటి దీంట్లో ఈ దృష్టికల్పితమైన జగత్తునందు దానిని అనుభవిస్తూ దాని మమత్వం మాత్రం విసర్జించడానికి ప్రయత్నిస్తూ జీవిత కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలని గీతా ప్రబోధం।
0: परंतु अंतिम यात्रा को न कैंसिल ही किया जा सकता है न ही पोस्टपोन। अतः जीवन में नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं कह सकते हैं। हमें सदा तीव्र वैराग्य के साथ तैयार रहना चाहिए। समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। मानव को समय का अनुसरण करना पड़ता है। समय मानव का अनुसरण नहीं करता है। समय प्रावाहिक है। अतः गीता का उपदेश है कि इस दृश्य कल्पित जगत का अनुभव करते हुए तीव्र वैराग्य के सहारे उसके ममत्व को त्यागने का प्रयत्न करते हुए जीवन के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उपसंहार। गीता मृत को प्लावित करने वाले अपने इस प्रवचन में भगवान बाबा ने साधकों की गलत धारणाओं को दूर करते हुए साधना के लिए अत्यंत आवश्यक वैराग्य भावना से संबंधित तथ्यों को सोदाहरण स्पष्ट किया है। स्वामी का स्पष्टतः कहना है कि साधना पथ में अग्रसर होने के लिए वैराग्य के सहारे मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। नश्वर को शाश्वत मानना ही मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है, जिसे सही मार्ग पर लाने में वैराग्य बहुत सहायक सिद्ध होता है। स्वामी का कथन है कि जीवन यात्रा के थमने से पहले ही साधक को जगत की नश्वरता और आत्मा के शाश्वत तत्वों का स्पष्ट बोध होना चाहिए। वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ने में महाराज जनक और हरिश्चंद्र के उदाहरण हमारे लिए ज्योति स्तंभ सिद्ध होंगे। अतः साधक को समय के रहते ही जागृत और स्वप्न दोनों स्थितियों में विद्यमान स्वयं से संबंधित सत्य से अवगत होने के लिए तुरंत वैराग्य पथ का पथिक होना चाहिए।
2: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 13 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।
3: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.